इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तिना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल हुई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहा जह हर सिमरन पया तह पाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी

जी को मन हो जाने मन कोई, मन्ने मार्ग ठाकन पाई, मन्ने पशु प्रगट जाई, मन्ने मगन चले पंथ, मन्ने धर्म सिद्धि संबंध, ऐसा नाम निरंजन होई, जी को मन हो जाने मन कोई, मन्ने पावी मुख द्वार, मन्ने परिवार साधार, मन्ने तरह तारी गुरु सिख, मन्ने नानक पव ही ना भिख, ऐसा नाम निरंजन होई, जी को मन जाने मन कोई।

ताप हुजा हो तीर्थ तप दया दत दान जिको पावे दिल का मान सुनया मनया मन की ता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तीरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगतन होए स्वास्थ्य अथ मणि बरमाओ सत सुवान सदा मन जाओ

परमखंड की वाणी रूप उदित गाड़ित घड़िय बहत अनूप ताकि अगला कथिया न जाहे जी को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरतु मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध कर्म।

मन में जली भी कर रहाओ। रत्ता पहनण मन रत्ता सी पी दी सतदान, नीली साई कदा करणी पहरण पैर त्यान। कमल मंद संतूख का थन जूवन तीरा नाम, बाबा हूर पहनण खुशी खुआर। जी पैदे तिन पीड़ी है मन में जली भी कर रहाओ। घोड़े पाखर सोए।

ना खुशी खुवार जीत चढ़े है तन पीड़ी है मन में चले भी कर रहा करमंदरा खुशी नाम की नादर तेरी परवार हुकम सोई तुद भाव।

रहा उसी राग महला पहला। कुंगू की काया रतना की लालता अग्रवासन सास हुई अठ सठ तीर्थ काम कुटिका तिरकण मत विकास उत्मति सालाहना सच नाम गुणतास। बाबा होर मत होर होर जी सुबीर कमाई है कूड़ा कूड़ा जोर रहा।

कई कोट नाम रस पीवै अमर पै सत सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सह समावै अपने जन को

जिस गए अंदर राज बहान सो नरक पाती हो तो सुहान जो जान में जो बन बंत सोहबद विष्टा का जंत आप सुखा कर मंत कहावे जन मेरे बाजोर ब्रह्म आवे तन पूंगा जो कर गुमान सो मूर्ख दा ज्ञान कार कर पर इसका हृदय गरीबी बसावे नान की यह मुक्ता का सुख पावे तन मंता है कर बावे तन समान कर संग ना जावे।

जावला जाने मूर्ति का छुए तब सुख सुख नाही कोए, जावे जाने मैं कुछ करता तब लगर जोन में फिरता, जो तारे को बैर मिद तब लगने चला ही चेता। जावलग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए, गुरु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानखा छूटै, सहज कटे लाका उड़ताव त्रित नावे माया पाछे पावे, अनक भोग विख्या के करै नैन्द्र बतावे खब खा मरै, बिना संदोक नहीं गुरा जय सपन मनोरत बिरते सब का जय, नाम रंग सर्व सो कोय बट पग के सह प्राप्त होए, कन करा बने आपे आप सदा सदा नन कर जाप, करन करावन करने हाल सक्यात का विचार, जैसी दृष्ट कर तैसा होए, आपे आप आप रस होए, जो कुछ गिन सो अपने रंग सब ते दूर सब हो गया संग, भू जय देख्या करै विवेक आपै एक आपै अनेक, मरण मन से आव न जाए नान सद ही रह समाए, आप उपदेश समझै आप आप रचै सब के साथ, आप गिनो अपने विस्तार सब कट सकाओ करने हार, उसते पिन को किचवै थान थन तरे कैसे होए, अपने चलताप करने हार कौ तो कर रंग या पार, मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत ज्ञान न जाए, सत सत सत पर स्वामी गुर प्रसाद गिने वखियानी, सच सच सट सकीना कोट मद गिने बिरला चीना, भला भला भला तेरे उपाय सुंदर पालन उपा, निर्मल निर्मल निर्मल तेरे बाणी कड़ कड़ सुने श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीता नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक, संत सन जो जन परै सूझन उतरन हार, संत की निंदा नानका बार बार अवतार अष्ट पदे, संत के दुख न आर जा कटे, संत के दुख न जम ते ने छुटे, संत के दुख न सुख सा जाए, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख न मत हुए मलीन, संत के दुख न सोभा ते हीन, संत के हृदय का रखे न कोय, संत के दुख न थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग नंदक भीतर है, संत के दुख न तेमक भवे, संतन के दुख न काग जो लवे, संतन के दुख सर्प जुन पाए, संत के दुख न तिरकत जोन कर माए, संतन के दुख न तिश नामै जलै, संत के दुख न सब को छलै, संत के दुख

दुखमय दुख नानक संत भावत सुखापी होय मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी के सहका नहीं मित, संत के दुखी का डाण लागे, संत के दुखी का सब त्याग, संत का दुखी मांगकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते डरे, संत के दुखी का नाही ठा नान स्वभाव तले मिलाए, संत का दुखी अध बीटते टूटे, संत का दुखी कितने गाज न पहुंचे, संत का दुख का ध्यान परमाई है, संत का दुखी जुड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते तो ज्यों सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश ना है।

अष्टपदी जब आकार कसन दुष्टेता पापन तब कहते होता जब तारिया पुन सुन सुमात तब बैर प्रोध के संग मात जब इसका वरण चिहन जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ के सोबत परम आपन खेल आवर्ती जा नान करने हार न दूजा जब हो बुध प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब शिव शक्त कहो कठाए जब आप अपनी ज्योत तरे तब कम निडर कमन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन मंदिन बादे अपन आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैर कहो क्या तूता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन विमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसे भूकम तृप्तावै कारण खरावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तह बीद कतेब कहाँ कौ चीन जब अपनाप आप उतार है तो शगन अपशगन कहाँ विचार है जय अपन ऊचापन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्मर है बिस्माद नानक अपने गत जानहु आप जय छल छेद भेद सुमाया उहां किसे व्याप्त माया आपस कौ वापे आदेश तिह गुण का नाही प्रवेश जय का एक भगवंता तह कौन अचिंत किसला गय चिंता जय अपन आप तियारा तह कौन तय कुन सुन हारा बाहो बेअंत उष्ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा जय आप रचियो पर पंच कार तिह गुण मैं की नो विस्तार पाप तय पई कहावत कौ नर को सुरग मछावत आल जाल माया जंजाल होमै मोह भरम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की उपख्यान आपन खेला आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक कह जय भगत भगत है आप जय बसर पासार संत प्रताप धूम पका आपे धनियों की सुबान हो बनी आपे कौतक करे अंध चोज आपे रस भोग निर्जोग जिस भावे तस अपन न लाभ है जिस भावे तस खेल खिलाब है बीश मार अथाया घन तुले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुर आया पे वर्तन हार नानक को पसरिया दूजा कै दृष्टार अष्टपदी आप थे अब सुनने हार आपे का विस्तार जात भावेता सृष्ट पाए अपने भाणे लय समाये तुम ते बिन नहीं किच होए आपन सुध सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेटा नानक सकल सृष्ट का जेता जी जंत्र सप्ता के हार दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तस कोई न मारे सो मुआ जिस मनम बिसारे तिस्ता जबर कहाँ को जाए सब सुरेक निरंजन राय जी की जुक्त जाक सब हाथ अंतर बाहर जानू साध गुण निधान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर है दयाल सब पर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रह व्याप प्रत पालय जीन बहु पांत जो जल चुत से त्यात जिस भाव तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हर नानक एक जानिया जन ला का हर एक नाय तिसकी आसना व्यर्थे जाए सीव कौ सेवा बने आई हुकुम बुझ परम पद पाए स्त्री उपर नहीं विचार जा कै मन बस्या निरंकार बंधन तुर पय निर्वैर आंदन पूजे गुर के पैरे लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभा पे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गाओ प्र परमानंद राम नाम दत्त करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार
आमृत वचन हर की गुण गाओ प्राण तरन काय है स्वाव आठ पहर प्रभे को नेरा मिटे अज्ञान मिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो हलत पल दियो लिहो स्वार राम नाम अंतर उर्धार पूरे गुर की पूरी दीख्या जिसमन वसद साच परीख्या मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर गाने बह खेप तुम्हारी एक टेक रखो मन माहे नानक बहु नया बह जाहे तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे रखन हार ते आए निर पहु जप ऐसा गल पाव मिटे प्रभ कृपा दे प्राणी छुटे जिस प्रभ रख तिस नाही दुख नाम जपत मन हो बत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर पुर ठंडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदलत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन वसै सो होत निहाल ताके निकट नावद काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान धीर विनाश हर कृपा ते संत बेटिया नानक मन प्रगाष्ट बदी संत संगंत प्रभिठा नाम प्रभु काला गा मिठा सकल समग्री एक सकट माहे अनकंग नाना दृष्टा है नौनद अमृत प्रभ का नाम दे ही मैं इसका विश्राम सुनो समाधन तैनाद कह न जय चर विस्माद तीन देख्या जिस आप दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत धर्म माहे आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गए तैसा कर्म पावन पाणी बेसंतुर माहे चार कुंड दिस समाहे तिस्ते बिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससे अशोर ने कत्र में एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप डोल न कभू डोले सर्व कला कर खिल खेल मोला पाया गुणे मोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धार हो स्वामी उत्पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में हो बेसा संत जना का बेकन स्व ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्वव्यापी राम संग रजन जिन जाता तिसकी ये रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हर प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख समोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पाद तिस भावे ता करे विसार तिस भावे ता एक ओंकार अनेक कला लखी न जाए जिस भावे तिसले मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर गाति आप जनाए नानक ते जना बुझाए सर्वभूत आप अवतारा सर्व नैना बेखन हारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जान खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया साहब के मतलब तो रहे जो किश कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा भावे ताले समाए इसते हुए सुना ही बुरा और कहो करे कछ कर आप भला कर तू तत्नि की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोधा पन संगराजता के गदमित कहीं ना जाए दूसर हो सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिसदा सुख होए आप लय लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिसदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद साहब जगत राया जन आवन का एह स्वाओ जन के संगत ते आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन का

जाकै मस्तक करम प्रभ पाई, साध शरण नानक त्याई, जिस मन से सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत।

जो सेवा है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै है तुद जी से जन जोग मह सुखवासी। से मुकत पै जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फासी। दिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भाउ सब गवासी। दिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनंता।

सिमृत शास्त्री कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक दी जो पावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परंपर करता दी तुद जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सच्यार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हम पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जानाए हे सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहज ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखै है जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ पहले निवासा पानी पावक तिनह किया पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबियले मन एक न चित समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हों जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही भी सरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन कै

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता। खिल भिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जप पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल। सुनै गुंग जो याहे, सुर सुन पावई। सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट, न तिन नर के रह है। हो जो या की एक बार, चौपाई को कह है। चौपाई संबत सत्रह है, सहस पणिजय। अर्ध सहस पुन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे, जब ते तुमरे। तब ते को आंख तरे नहीं आने। ओम राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब, बहु भेद कह हम एक न जान्यो।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌਨਿ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

कस मन पूर नासा अमृत नामृत माय समाए नानक जन का दासन दसना कौका सिमर से पदवंते कौका सिमर से गुरु प्रदान कौका सिमर से सौ गिराजे

0: जय मात पिता सुत मीत ना पाई,
1: मान हुआ नाम तेरे संग सहाई।
0: जय मां पयान दूत जम दले,
1: मैं केवल नाम संग तेरे चले।
0: जय मस को लोत पारी,
1: हर को नाम किर मैं उधारी।
0: अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे,
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे।
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे,
1: नानक पावो सुख करे रे।
0: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया,
1: हर का नाम जपे दुखिया।
0: लाख करोड़ी वंदना पर,
1: हर का नाम जपे निस्तरे।
0: अनेक माय रंग दिख न बुझावे,
1: हर का नाम जप लगावे।
0: जे मारग जात किला,
1: संगोत
0: ऐसा नाम सदा दे आइए। छूटत नहीं कोट लगवा।

यतन करे तो भी सर्पंग नहीं हो तो आप सुगमन नानक तुम्हारी कृपा करे जो मैं आई दास प्रीत अनंत के मारंग सहे काना

ब्रह्मज्ञानी को बदला जाइए नान ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी के सगुण मन माए ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्मज्ञानी जाने नान ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सजीवनी माता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता

ऐसी युग नान रामदास जीवन मुख सौ कहावे सदानंद नहीं प्रयोग तैसा मृत तैसी भिखारी तैसा रंग तैसा राजान नानक उपर कहिए जीवन मुक्त जित का राख है तैसा दिन नाम रापा वैसो इन बनोगे।

गोर्धन परमेव दासी कई गोर्ध मिसरो ते कई गोर्ध का विचार है नानक करते कांत न पावे कई गोर्ध अंधयानी कई गोर्ध विकार निकोर कई गोर्ध भूख न करे कई गोर्ध प्रदेश परमाए नानक करते की जाने करता रचना कई कोट राजे रस भोगी कई कोट बात लिख जाए कई कोट देश मंडल कई कोट देवदान दर्शन सत्र नानक जिस पावे तिस निस्तार है कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास कई कोट नाना प्रकार जानत कई कोट की मेरे स्वरण दीवे कई कोट भूत प्रेत सुकुर मृगाच नानक आप अलग रहा भरपूर कई कोट नर स्वर्ग निवासी कई कोट वो जो नी ग्रह कई कोट

आत्मै पार्थं लभते तिन्कोमिय प्रभविनाश पार्थं दिलाकारांग नानक तेजन सदातन कई कोटकास ब्रह्मांड कई जोगिनो विस्तार सदा सदा एक एक अंगार प्रभु देव और ब्रह्मा समात्म

पावेदारुण पाखे आपरे आपन विचारे केले से अंदर जामी नानक दृष्टि अवर नावे जो जिस पावे सो ही करावे जो जिस पावे सो ही करे जे जानता अपना बचे निमुख पाए चार कुन फिरावे नानक तेज नाम मिले पार नाम गरीब निवाज सत्काल दैस प्रगटावे ताकाले कनकने जगदीश कट कट

अवतार आदर के को कैसे करे इसे भलाई निकटना है कौन नानक राखी निर्मल सोए तब इसको सुना ही होए तब लगा जो मैं फिरता तब लग में चला ही चीज तब लग तर माय देश जाए गुरु प्रसाद नानक और सुटे तृप्त नाम है माया पक्षे भाव है नहीं जबता है वे खप मराए सुपन मनोरथ प्रति सब काज है बड़ भागी किसे प्राप्त होए सदा सदा

सब कुछ उसका करने हार कांतनंतरे कैसोए कौतर करे रंग पार नानक कीमत कह न जाए गुरु प्रसाद की ने बख्यानी कोट में देखे ने मेला जीना अति सुंदर अपार रूप कट कट सुनी

0: नान संभाव्यदोषा भीयोय मोग
1: संत का दुखी किसे का नहीं मेत
0: संत के दुखी को दान लागे
1: संत के दुखी को सब त्याग
0: संत का

0: संत के दोख न दृष्टे कोई जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कट इसके ओ करने

0: जाने
1: नाम संग जिसका मन माने
0: निरंजन जाने
1: प्रसाद अपन आप सुजय संग राजस गायत अंतिम कीर्तन के लोग एक ऊपर जन की आशा ब्रह्म की दिश जिस मन पूप जिसको हर प्रमन चिता प्रभु अपना कृपा करे
0: सेवकों
1: ऐसा साथ ऐसा अधिष्ठाया।

पापुंतक देवता तब्यागुरुक संकुमात तब्यागुरुक संकुमात तमोकाकुसोत परमा नानकनेहानुजा तबंदमुक्तोकुसोगनी तब्यागुरुकोकानोतार तब्यागुरुकोकुत्राये तब कौन डर कौन कटर है नानक ठाकुर का नाम पार कर तेरे मन को कौन नाशन तब जब इतराज को किस होए तब चित्र को किस पूछ देखा तब कौन डर कौन बंधन बाते नानक का पंगू पापी प्रजा तेरी मैं को क्या करता तेरे मन को मान को मगमान कैसे त्रिलोक को किस तेरे किसे भूख को करता है नानक करते का

0: ममता नाही प्रवेश
1: ते कौन किस लगे चिंता ते कौन तो ते कौन संन्यारा नानक अपस्व अपरूचा ते उनमें किनो विस्तार फूल और कुछ और कुंचावत
0: हमें वो पर पैपार अनेक प्रकार की रूप ज्ञान
1: केस कुछ तो नाना के जब से

0: अपने पाने लय समाए
1: आपन सुसब जग करोए
0: सतनाम सोई कृपाए
1: नानक सत सुता रेता
0: दीन दयाल नाथ नाथ सोवा जन संसार है
1: सब तेरे
0: निरंजन राय
1: साथ
0: नानदास का बलियार सब पुरोध कृपाल अंतगामी रो व्याख जियन वो पात जो जो रुच सत्य सत्यात भगत करे हर के गुण गाए कर्ण हर नानक जानिया इसकी आस न रखी जाए हुकुम दूज ब्रह्म पद पाई जाके मन बसे निरंकार दिन पूजे गुर के पैर नानक हर प्रभा पे मेले गुण गाओ प्रभुर नानंद दुर्गते को करो उदार प्रांत काय स्वाओ मिट ज्ञान दिन से अंधेरा मन से नाम बल पावे राम नाम अंतर उतार जिस मन को सत्य साथ प्रीतिया दुख दर्द मनते को जाए दरगे निवेल के तुम्हारी नान को ना आ जाए उरे अपना आते आए रोकर बोते पानी छुटाए नान जगत मन हो सुख तुझन को कोई न को चुनार नान ताके कारे पूरा दसन से कदूर सिट सब सुंदर रूप अंतर

सर्वव्यापी राम संरचना सर्वचन साधु सब कहत कर्ण ग्राम और प्रभु जाने नानक दर्शन देव सब होई इस प्रति सभी उद्गत इस भावताय कुंकार जिस भावित लय मिलाए आपे आपा परपुर नानक जना बुझाए सब नैना पे कुनारा आपन जैसा भी सुना आज्ञा कर इनी माया जो कुछ करना सो आपे कहे नानक आपा तो लय सुनाए पूरे को अपना कित करा आपे जाने अपने जीती वो तो अपन संग्रह चल दूसरों के ताजो जी पाए गुरुप्रसाद नानक के जाना आपे अंगाय लय सोए जीवन मुक्त सदा प्रभावंत जिस प्रसाद से सत्र आया जान के सम

0: करते रहते।
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: प्रसाद दया प्रभारी
1: नानक की बेटी के कुमारी
0: रब की उस्तत करो संत मी
1: सावधान क्या कर चित
0: सुमनि सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन से दोत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हो
1: प्रधान प्रभु प्रकट सोए
0: सबते ऊंच पाए स्थान
1: और ना वे अनजान
0: हरतन खाट चले जन सोए
2: नानक से प्राप्त होए
0: हेम शांत हृदय नम निद
1: ज्ञान सब तजित
0: विद्या तप जोग प्रत्यान
1: ज्ञान से सूतम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास
1: सकल देवदास
0: सुंदर चतुर तत्का वेता
1: सदा सिए।

जस जगत पर छायो, श्री गुरु रामदास ज्यो जय जग मैं, ते हर परम पद पायो। तिनको अवतार पयो कल पिंतर, जस जगत पर

नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भक्त प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है इक जी कछ कही न जाई सोडी श्रेष्ठ सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है इक जी कछ कही न जाई सोडी श्रेष्ठ सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई।

0: रामदास राखो शरनाई।
1: मोमल विवश कियो, काम गए केस पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अवमान सिर चाड़ियो, जन्म काल कर जोड़, हुकम जो होए सो मने, पव सागर बंदियो, सिख तारे सुप्रसन्न, सिर आत पत सच्चो तकत, जोग पोग संजुत बल, गुरु रामदास सच सलपण, तू अटल राज अपग दल, सिर आत पत सच्चो तकत, जोग पोग संजुत बल, गुरु रामदास सच सलपण, तू अटल राज अपग दल।
2: वाहे गुरु जी, तू सतगुरु चों जुगी, आप आपे परमेसर, सुर नर साधिक सिद्ध, सिख सेवंत तुरो तुर, आद जुगाद अनाद, कला तारी त्रह लोहे, अगम निगम उदरन, जरा जमे आरोहे, गुर अमरदास

0: सके कोई।
1: जे को खाए आखण पाए ओह जाने जेतिया मुह खाए।
0: आपे जाने आपे दे आखे सिवे के।
1: जिसनों बख्शे सिफत सालाह नानक पातशाही पातशाह।

नमो जोगजोग स्वरं परम सिद्ध नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते नमो नित नारायणे।

नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी सदा सिद्धा बुद्ध दा बृद करता

0: तेरा जोर चाचरी छन जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं
1: प्रभु है जुए देश है पे से
0: भुजंग पर्यात छंद गादे बादे आनंदी स्वरूप नमस्तुंगनाथ नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो राज राजे नमो साज साजे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो सर्व रोगे नमो सर्व पोगे नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व

अनमृत कर में अनमृत तर में अचल राज अटल सच सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग रुआल छन त्वे प्रसाद आद्रूपनाथ मूर्त जोन पुरख पार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल नाम ठाम न जात जक रूप रंग न रेख देशो न पे जक रूप रेख न राग नाम काम पहीन पेकत तामून जाहे एक मूरत नेक दर्शन कीन रूप अनेक देव न जाने जब बेद और कतेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन लोग चौदह के बिके जग जापे जे जाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार कालहीन कला सुजुगत काल पुरख देश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम आप रूप अमीक अनुष्ठत एक पुरख अवधूत अंगहीन अपंग नातम एक पुरख पार।

0: ती छंत प्रसाद कथते के आछे जदेसे के आपे जपेसे
1: क्या गज कर में क्या बज पर में
0: के आपे जलो कह के आदित्य सो
1: क्या गुद बरने के विभुत करने
0: के राजन प्रभा है के तरमंग तुजा
1: क्या सुख बरने के सर्वा बरने
0: के जगतंग कितरी है के छत्रन छत्री
1: के बरमंग स्वरूप है के अनुप
0: के आद अदेव है के आप अपेव है
2: छत्रन बहीन है के अधीन
0: के रोजी रजा के रहीम में रिहा
2: के बाक गय है के गय
0: के अफल गुना है के सहान सा है
1: के रोजी दे
0: के राजक रहीम है के कर्मं करीम
1: के सर्वं करी है के सर्वं दली है
0: के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानी
1: के सर्वत्र कौन है के सर्वत्र कौन है
0: के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र पेश
1: के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज
0: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र पेश
1: के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज
1: के सर्वत्र सोखय के सर्वत्र पोखय
0: के सर्वत्र त्राणय के सर्वत्र प्राणय
1: के सर्वत्र देशय के सर्वत्र पेशय
0: के सर्वत्र मानिए सदैवं प्रधानिए
1: के सर्वत्र जापय के सर्वत्र थापय
0: के सर्वत्र पानय के सर्वत्र मानय
1: के सर्वत्र इंद्रय के सर्वत्र चंद्रय
0: के सर्वं कलिमय के परमं फहीमय
1: के अकल लामय के साहेब कलामय
0: के हुस्न वजू है तमाम रजू है गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते तमीजुल तमाम रजू अल निधान अनेक कुल तरंग है अपेद है अपंग
1: है
0: निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत
1: है
0: सदैव स्वरूप है अपेदी अनुप
1: समस्त
0: समस्त सलाम है सदैव लकाम है
1: निर्वाद स्वरूप है अगाध है अनूप है
0: आदि रूपे अनाद स्वरूप
1: है त्रिपंगी त्रिकामे
0: त्रिवर्गन त्रिपादे अगंजे अगादे
1: स्वंग सर्पागे सो सर्वानुरागे
0: त्रिभुक्त स्वरूप है अचिज है अछूत है
1: नरकं प्रनास है प्रत्युल प्रवास है
0: निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है
1: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
0: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा
1: अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
0: चाचरी छंद अपंग है

0: आते हैं, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है,
1: अचिंत है, सुनिंत है, अलेख है,
0: अलेख है, अपेख है, अटा है, अगा है,
1: संभ है, गंब है, नील है, नाद है,
0: अनित्य है, सुनित्य है, अजात है, अजाद है,
1: चट्पट चंत्र प्रसाद।

0: परम तत्न तत्न स्वरूप
1: नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
1: नमो चित्त चुद्दे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो पोज पोजे नमो पान पाने
1: नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे
0: नमो इंद्र इंद्र नादं विभूते
1: अलंकार रूपे अलंकार लंके
0: नमो आसे आसे नमो बांक बंके
1: रूपे अनंगी अनामे
0: पंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
1: कचरी शांत जय अले अपे अबे
0: अभू अजू अनास कास
1: अकांच

0: परे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे,
1: वासन माते मतंगन मान मलेंगे,
0: श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे,
1: पार बड़े बरियार बचारे सार की तार पछैया,
0: तोड़ देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया,
1: गडान के तोड़न हार सुबातन ही चक जार लवैया,
0: साहिब श्री सब कोसर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया,
1: दानव देव निंद निसाचर भूत पविख पवान जपेंगे,
0: जीव जिते जल मैं थल मैं पली पल मैं सब था थपेंगे,
1: पापन बाट जय तुन पापन के वो पुंज खपेंगे,
0: सात समूह पर सन फिरे जग सत्र सबे अवलोक चपेंगे,
1: मानव इंद्र गजेंद्र नरात अब जोंतर लोक को राज करेंगे,
0: कोट स्नान के जात के दान नेक स्वयंवर साज भरेंगे,
1: ब्रह्म महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे,
0: जय नर श्रीपत के

0: सच्चे साहब जो पावे तिवे चलावे।
1: ए सुहेला सब सुहावा सदो सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया।
0: एहो तिनके मन वसिया जिन तुरों लिखे लिखिया आया।
1: एक फिरे कनेरे करे गला गली की नेना पाया।
0: ए नानक सबद सुहेला सतगुरु सुनाया।
1: पवित्र होए सेजना जिनी हर त्याया।
0: हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिनी
1: पवित्र माता पिता कुटुंब सहित सो पवित्र संगत सबाईया।
0: कहंदे पवित्र सुनदे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया।
1: कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर ते आया।
0: करमी सहज ना उपजे बिन सहजे सहसा ना जाए।
1: न जाए सहसा किते संजम रहे करम कमाए।
0: सहसे जो मलिन है कित संजम तोता जाए।
1: मन तो वो शब्द लागो हर सो रहो चित लाए।
0: नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा
1: जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया।
0: ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया।
1: वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया।
0: कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी।
0: की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समानी।
1: जन्म रतन जिनी खटिया बले सेवन जारे। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले। जन्म चारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले। जेको सिख गुरु से ती सम्मुख हो है ता सम्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले।
2: गुर के चरण हृदय त्याय अंतर आत्म समाल है।
3: आप छट सदा रहे पढ़नी गुर बिन अब न जाने कोई।
2: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख।

0: चढ़ाओ।
1: सिर्फ सख्त आप उपाय क्या करते, करता आपे हुक्म वर्ताए,
0: हुक्म वर्ताए आप एके गुरमुख से बुझाए,
1: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मान वसाए,
0: गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सिओले बुलाए,
1: कहे नानक आप करता आपे हुक्म पुजाए,
0: सिमरत सासत कुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी,
1: तत्ते सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न जानी,
0: तेही गुणी संसार ब्रह्म सुखता सुतिया रहन बिहानी,
1: गुर कृपाते से जिन जागे जिना हर मन वस्या बोले अमृत बानी,
0: कहे नानक सो तत पाए जिसनु अंधन हर लब लागे जागत रहन बिहानी,
1: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है,
0: मनो क्यों विसारी है एवर दाता जे अगर में आहार पहुंचावे,
1: ओस नो क्यों पोय न सकी जिसनो अपनी लिव लावे,
0: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए,
1: कहे नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है,
0: जैसी अगर उदर में तैसी बाहर माया,
1: माया अगन सबको एक सब इको जय करते खेल रचाया,
0: जातिस पाणा ता जमिया परवार पल्ला पाया,
1: लिव चुटकी लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया,
0: ए माया जिथर बिसरे मोह जे पाओ दूजा लाया,
1: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तीनी विचे माया पाया,
0: हर आप मुलुक है मूल न पाया जाए,
1: मूल न पाया जाए किसे विटो रहे कर्म रहे लोक विलाए,
0: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु से सोपिए विचो आप जाए,
1: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए,
0: हर आप मुलक है पातिना के नानका हर नास ले पाए, हर रास मेरी मन वंजारा, हर रास मेरी मन वंजारा सतगुरु ते रास जानी,
2: हर मैं तो जपियो जियो ला हटियो
0: लाड़ी, ए तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा,
3: कहे नानका रास मेरी मन होवा वंजारा,
0: ए रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास न जाई,
3: प्यास न जाए होर किते जिचर हर रस पल्ले न पाए,
0: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुत न तृष्णा लागे आए,
3: हर रस कर्मी पाइए सतगुरु मिले जिस आए,
0: कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर बसे मन आए,
3: ए शरीरा मेरे हर तुम में ज्योत रखी ता तू जग में आया,
0: हर ज्योत रखी तुद बिच ता तू जग में आया,
2: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो
3: पाए जगत दिखाया,
0: गुर प्रसादी बूझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया,
3: कहे नानक सिष्ट का मूल रचिया ज्योत राखी ता तू जग में आया,
0: मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल।

0: हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया
1: गुर प्रसादी हर मन बसिया पुरप लिखिया पाया
0: कहे नानक है शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चित लाया
1: ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में ज्योतरी हर बिन अवर न देखो कोई
0: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया
1: ए विश संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया
0: गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक हर बिन अवर न कोई
1: कहे नानक ए नेत्र अंध से सदगुरु मिलिए द्रुप दृष्ट होई
0: ए सरनो मेरे ओ साचे सुनने नू पठाए
1: साचे सुनने नू पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी
0: जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस समाणी
1: सच अलग बिडाणी ताकि गत कही न जाए
0: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नू पठाए
1: हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया
0: बजाया वाजा पवन नौ द्वारे पर
1: गुरुद्वारे लाई पावनी इकना दसवां द्वार दिखाया
0: अनेक रूप नव नव न जाई पाया
1: कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया
0: यो साचा सोहेला साचे कर गावो
1: गावो ता सोहेला घर साचे जिथे सदा सच

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधि आवै धाए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यांतर के। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां।

बहुते जन्म पर हमें आता सतगुरु शब्द सुनाया। सतगुरु जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया। सतगुरु मिलिए सच पाया जिनी विचों आप गवाया। जिन सचों सच बुझाया।

नेत्री जगत निहालिया डूबे से बन जा रहा कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार

जैसे पंछी उड़त फिरत है आकाशचारी, जारीदार पिंजरी में राखियत आन के, जैसे गजराज गहबर बन में मदोन, बास हुए महावत के अंकुश की मान के, जैसे बिखिया तार बिखम बिल में पाताल, गहि साप हीराता ही मंत्रन की कान के, तैसे त्रिपवन प्रत प्रमत चंचल चित, नेह चल होत मत सतगुर ज्ञान के, तैसे त्रिपवन प्रत प्रमत चंचल चित, नेह चल

एक ओंकार सत गुरु प्रसाद संतन अवर ना काहू जाने बेपरवा सदा रंग हर कह जा को पाख सुमी राहो ऊच समाना ठाकर तेरो अवर ना काहू ताने ऐसो अमर मिलो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जना नहीं निकटाने निरपो हुए रहे लेवे कह नानक हर मन माने टोडी महला पंजवां हर बेसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जा कोई ओट तुहारी रहो बिन सिमरन जो

मत वारो मत मायो करूं बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछै राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवां मानुख बिन बूझे बिरथा आया निक सा छिंगार बो करता ज्यों मृतक उठाया रहो ताए ताए कृपण शर्म कीनो ये कत्तर करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया।

मांगू दान ठाकर नाम, अवर कछु मेरे संग ना चाल, मिले कृपा गुण गाम रहो। राजमाल अनेक भोग रस, सगल तरवर के शाम, ताए ताए बहु बिद को तावे, सगल नार्थ काम, भिण गोबिंद।

खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बेचारे साध संग परम गत पाई है माया रच बंद हारे चरण।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हां हां लपट्यो रे मूड़े कछु ना थोरे, तेरो नहीं सो जानी मोरे राओ।

आचार व्यवहार जात हर गुणिया मां आनंद कीर्तन हर सुनिया कहो नानक जन ठाकर पाया सब के तिस के ग्रह में आया। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਦੋਪ ਦੇ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।

हर हर पतित पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहो सुंदर सुगड़ चतर साबे तारिद दास निवास भक्त गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूमि बीजन सोखावन विस्मन।

माई माया चल तिरन की अगन मेकी छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहो छोड़ सियाण बबोचत राय दोए कर जोड़ साधु मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे काए उत्तम फल।

कहो कहां अपनी अदमाई उर्जो कणक कामनी के रस नै कीर्त प्रभ गाई रहो जग झूठे को साच जान कै तां स्यों रुच उपजाई दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू होत जो संग सहाई।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। कायरे बक बाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो रहो।

जाप मन हर हर नाम नेत त्याए, जो इच्छे सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आए रहो।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो राओ जो चाहत सो

यक अर्ज गुप्तम पेस्तो दर गोस कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुका में फानी तहकीक दिल दानी मम सर मूए अजराइल गिरफ तै दिल हेच ना दानी रहो। जन पिसर पदर बिरादरा केस नेस दस्तंगीर आखर ब्या फतम कस न दर्द चू शब्द तकबीर। सब रोज गस्तमदार हवा कर देम बदी ख्याल गाहे ना नेके कार कर दम मामी चिनी अहवाल।